एतन होती खाक में माड़ी गोर करे, एतन होती खाक निमाणी गौर करे। अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी।

चलने चल हार बिचारा ले मनो चले चलन हार विचार ले मनो गंडे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठीनो जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गए

कहे नानक चेतरे मन जीड़िया परदेसिया जीड़िया परदेसिया जिस वक्र को लैन तो आया राम नाम संतन कर पाया तज अभमान लिया मनमोहन राम नाम हृदय में तो लाद के

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कर कबीर सूरे प्राणी कैद कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

जानी जीवत लो ब्योहार है जको तो जानो जीवत लो ब्योहार है जको तू जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुख समान।

थोड़ी बात मा हर जसरे मन गाय ले हर जस रे मन गाय ले जो संगीत है तेरो असर बिचो।

कृते दत्त कत्ता दी गिन्नधा कणनक त्रिकृधे ता तके त्रिकृधे ता घर दी गिन्नधा दी धा कणनक त्रिकृधे ता तके त्रिकृधे ता घर दी गिन्नधा दी धा कणनक त्रिकृधे ता तके त्रिकृधे

हितधारियां देखे किता अपना दर्क चिपकी सारियां जो आया सो चलसी सब कोई आई मारी है जिसके री प्राण है।

इतनियां गलतियां कीतियां पिछले जन्मां विच कि मुड़ के ओही गलतियां इस जन्म विच कर रहे हैं। ऐ जरा रेडियो बंद कर दियो, विच चल रहा है, टेप नू चलाण तों पहला वेख लिया करो। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह आखदे पहला गलतियां कीतियां हुण मुड़ के गलतियां कर रहे हैं, ते दाता जे तू बख्शना है ते बख्श लै, नहीं तां साडे लई तां अगे जुतियां तैयार ने। पातशाह गुरु नानक देव जी आखदे

கதிர்தானி தானி தொந்தானி தழல் தோன்றினா கதிர்தானி தானி தொந்தானி தழல் தோன்றினா धर्म दृंग दागृदी धेम दरना दागृदी धर्म दृंग दागृदी धेम दरना दागृदी धर्म दृगतांग दागृदी देम दरना तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम दरना तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम दरना तक तक तक तक धली कर धली कर तक धली कर तक त्राम किरता किरता तक तक धली कर तक धम कर तक तक धली कर धा दरना दरना दरना तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम दरना दानी दानी तुम दानी तालल तुम दरना तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम दरना संगीत भुजंग प्रयाग छंद जागर दंग नागर दंग बागर दंग बाजे गागर दंग गाजे महा गाजे गाजे कागर दंग तीरंग तुकंग कड़ाकंग कागर दंग काती कटारी कड़ाकंग दिरना दिरना दिरना

और सत्संग जीओ। जो बच्ची का जन्मदिन है, बच्ची अविनाश कौर, गुरु उसनु उम्र दराज करे, विद्या दान बख्शे।

रोग मिट जाएगा? कदे नहीं मिट सकता, क्योंकि ना दवाई खादी ना परहेज किया, रोग वधदा गया वधदा गया वधदा गया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सचे पातशाह महाराज कलगीधर गरीब नवाज साहब दे पावन दरबार दे अंदर गुरसिखा ने गरीब नवाज कलगीधर पिता नूं एक बात कही, महाराज आप जी दे सन्मुख हाजर हां, सतगुरु आप जी ने एक हुक्म कीता है भी बाणी पढ़िया करो, क्योंकि बाणी गुरु है, इस दे विचों तुहानूं परमात्मा दे दीदार होणगे, रब दे राह दा पता लग जाएगा, प्रभु दा दर पता लग जाएगा, वी कैसा दर है, किड्डा खूबसूरत घर है, ओ किड्डी खूबसूरत डेकोरेशन है उसदी, उसदे दरबार दे अंदर कैसे कैसे चौबदार खड़े ने संतरी, जिन्हां ने कई कई जोग साधना साधी ना तपस्या कीती बंदगी कीती है, ओ उसदे दर दे सामने खड़े चौर कर रहे ने, ते जदों तुसी उसदे दर विच पहुंचोगे ते तुहानू आवन अंदर वड़दियां ओ आदर सत्कार दे नाल लेके जाणगे बिठाउणगे, छत्ती छत्ती जोग जिन्हां ने तपस्या कीती ओ तुहाडी इंतजार अंदर ने भी इसदे दर विच कोई आवे। गरीब नवाज साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी बात सुन के सिंह कहन लगे, महाराज आप जी ने कहा भी बाणी ज्यादा पढ़ियो, रस आउंदा बड़ा रस आउंदा महाराज, पर असी ते बाणी पढ़दे आ सानू रस आउंदा ही नहीं, बाणी पढ़दे आ रस आउंदा ही नहीं, सरूर ही नहीं आउंदा, बाणी पढ़न लग्या चित जेड़ा आसे पासे भज जांदा, ख्याल किते होर चले जांदे ने, मन टिकाणे नहीं रहिंदा, अखां दे नाल पढ़ छड्डी दा रसना बोलदी रहिंदी है। महाराज गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज कहन लगे, फिर भी बाणी पढ़दे रहा करो, बाणी पढ़दे रहा करो, किसे कपड़े दे उपर बहुत ज्यादा मैल चढ़ जाए ना, वो फिर एक बारी धोण दे नाल नहीं उतरदी, उनू काफी बार साफ करना पैंदा, बहुत समा साफ करना पैंदा, उसनू उपरली मिट्टी निकलदी है, फिर अंदरली कपड़े दे विच रसी होई मिट्टी निकलदी है, तां जाके कपड़ा किते साफ हुंदा है। बाहर सामने दरखत ने इन्हां दे उपर बड़ा धूर गर्दा जमया होया, बरसात पैंदी है, एक पत्तियां दे उपरों धूड़ उतरदी है, पर पत्ते चंगी तरह साफ नहीं हुंदे, इन्हां दे विच चंगी तरह हरियावल नहीं आउंदी, दूजी बरसात पैंदी है, तीजी बरसात पैंदी है, सावण दे महीने दे विच कदी वेखो बरसात दीआं रुत्तां दे अंदर भाई बनस्पति दा रंग ही कुछ होर हुंदा, हरा कच रंग हो जांदा, क्योंकि जेड़ी मैल उतरदी है मीह पैंदा ला दिंदा, जेड़ा धूड़ पत्तियां ते चढ़दी है मीह पैंदा उस धूड़ नूं ला दिंदा, बनस्पति हरी कच नजर आउंदी है, इस ते मैल नहीं चढ़दी, रोजाना बाणी पढ़न दे नाल मन ते मैल नहीं चढ़दी, जिन्नी क चढ़दी है बाणी जेड़ी है उस नूं ला दिंदी है, फिर मन उज्जल दा उज्जल हो जांदा। फिर भी महाराज सचे पातशाह जी ने बड़ा समझाया, सिख कहन लगे, महाराज कोई दलील दे के समझाओ, ए दलीलां बड़ियां आप जी ने दितियां, कोई अंतरी भी दलील, उस समय इतिहास च लिखिया भी, महाराज कहन लगे भाई भंग रगड़ो, सुखा इस नूं दौरे विच पा के सुखा रगड़ाया गया सिंघां कोल, सुखा काफी सारा रगड़ा के ते महाराज सचे पातशाह ने गिलास भर भर के दिते, कहन लगे इन्हां नूं पियो, पर अंदर नहीं लंघाणा गले तों, ए मूंह दे अंदर अंदर रख के बाहर डोली जायो, घुट भरन कुरलियां करन बाहर डोल देन, घुट भरन कुरलियां करन बाहर डोल देन, गिलास दा गिलास खत्म हो गया। महाराज कहन लगे, बाद विच पुछिया, कहन लगे भी कोई नशा आया, कोई अंदर सरूर पैदा होया, महाराज सरूर पैदा किस तरह होना सी, जद अंदर ही नहीं गया, जद ए अंदर ही नहीं गया ते नशा कितों चढ़ना सी, ते सरूर कितों पैदा होना सी, ते महाराज गरीब नवाज कहन लगे, इसे तरह ही गुरु के सिखो, गुरु की बाणी है, ए पढ़ते हां आपां, हिरदे च नहीं वसाउंदे, कुरलियां कर करके बाहर डोली जाने आ, ते जदों ए बाणी कुरलियां कर करके बाहर डोलदे आ ना, इस दा रस नहीं आउंदा, ए हिरदे च जिन्ना चिर नहीं वसदी उन्ना चिर रस नहीं आएगा, उन्ना चिर स्वाद नहीं आएगा, उन्ना चिर रब दा पता नहीं लगेगा, तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो, तत्तै सार ना जानी, तत् ते सार गुरु तो बगैर नहीं मिल सकदा, एक गुरु है जिहड़ा दस सकदा है संसार दे विच, गुरु महाराज सचे पातशाह ने सानू ए सोझी दे दिती भाई बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बाणी गुरु है, इस दे चरणा दे उपर नमस्कार करो, मथा टेको, इस नूं बारंबार जपो, हृदय दे अंदर जदों जपोगे ना इस दा प्रकाश हो जाएगा। गुरु अमरदास महाराज नूं सवाल कीता सी ना पंडतां ने ब्राह्मणा ने,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਤਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਨ, ਪੁਰਾਣ ਸਨ, ਵੇਦ ਸਨ 4, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਨ, 18 ਪੁਰਾਣ ਸਨ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਨ, 28 ਗੋਤਰਾਂ ਸਨ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਸਨ, ਸਾਖਾਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰਚੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰਚੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਈ ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਘਲਾ ਬਰਸਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਦਲ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ। ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਘਲਾ ਬਰਸਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀਂ? ਜਦ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਰਸਦਾ? ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਰਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲਿਓ ਪੰਪਰਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਜਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੇਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਸਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल वो फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नरक कहीं ना लेख है, नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है,

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किमें प्राप्त करेगा। नंबर वन, देही नु सो, देही नु काड़, इस नु डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत कर दी, तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता, क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नूं कमजोर बनाने हैं, इसनु खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, फिर इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नु सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उना नालों सेपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करने वाले, अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ, अते जो विचार है उना दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट टू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू, फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू, एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनू देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उसे उन्हें देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव के उन्हां नू इनडिफरेंट होके, उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप में थॉट्स को अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे ना, उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वॉच देम। सिर्फ उन्हां नू देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्हां नू देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नू करना है। अपने विचार अस्वारी कीजे, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनू देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नू देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वद्दा है, अगा वद्दा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप दे विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग है। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
उतना उतने वो गैप्स वधदे जाणगे। जदों गैप्स लंबे हुंदे जाणगे ते उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करन वाला या मंदिर मैं कौन बसाई, जिसलिए एक असी वंडर करदे हां कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वो है आत्मा, वो है वाहिगुरु जी दी अंश, वो है वाहिगुरु जी दी जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नू देख रहा है, फिर असी उसनू पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनैक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। सो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजे, ते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो, तुहानू पता नहीं लगा किसी ना किसी थॉट दे फ्लो दे विच निकल गए हो, उदों फौरन वापस फिर वापस आओ। और वापस आके जदों ही कोई थॉट आवे, मन किते जान लगे, अपने मन नू आ पंक्ति बोल देनी केड़ी।

थॉट तो बाद कितनी कितनी देर तक दूसरा थॉट नहीं आएगा। जिन्होंने ये अभ्यास किया उन्होंने पता है एक थॉट नो वाच कर रहे हैं और उसनों उत्थे ही उन्होंने खत्म कर देता है, देन उस तो बाद जो दूसरा थॉट है कितनी देर तक दूसरा थॉट नहीं आएगा, वो टोटल साइलेंस का टाइम होता है अंदर, और उस साइलेंस के विच स्टिल जो एक्सपीरियंस करने वाली जो साड़ी कॉन्शियसनेस है फिर असी उसनु एक्सपीरियंस करते हैं। सो देन द एक्सपीरियंसर इज द वन विच इज एक्सपीरियंस्ड। सो दूसरा अभ्यास है मंद, और तीसरा अभ्यास है गुरु बाबा जी आखते हैं सुरती का, क्योंकि अगर दो इंसान गलबात कर रहे हैं एक दी सुरत उत्थे नहीं है, ध्यान उत्थे नहीं है, अटेंशन उत्थे नहीं है, तो एक बंदा कुछ कही जाता है पर एक बंदा सुनदा सुनदा भी उसनु कुछ नहीं पता चलता। बाद अगर उसनु दूसरा इंसान पूछता है कि मैं की क्या, तो वो बड़ा एम्बेरेस हुंदा है कि मैंने तो पता ही नहीं चलिया कि की क्या है, क्योंकि सुरति उत्थे प्रेजेंट नहीं सी, ध्यान उत्थे प्रेजेंट नहीं सी, इस करके वो गल कही हुई भी असी रजिस्टर नहीं की। कई दफा असी सामने कुछ देखते हैं पर साडा ध्यान कितने हुंदा होर है, फिर भी असी देखने दे बावजूद भी चीज देखी नहीं होंगी क्योंकि ध्यान कितने होर सी। सो तीसरी साधना है ध्यान। इस शब्द महाराज जी ने पहली ही लाइन च यह तीन गल्लां आखती हैं कि नाम जपण दे वास्ते जो मैथड है सब तो पहला अपनी बॉडी नू साधो, शेप अप करो, इस दी हैबिट्स नू ठीक करो, इस नू मास्टर करो, इस दे उत्ते अपना कंट्रोल अचीव करो, सेंसेस दे प्लेजर जो सानू ड्रैग करदे हन उना उत्ते अपना कंट्रोल करो। दूसरा है माइंड, जिसकी मैं आप जी दी सेवा च अर्ज कर चुका हां, उस अभ्यास नू करो, अपने विचारां नू अलग बैठ के सिर्फ देखो। ए पहली दफा ए फिनोमिनन होएगा कि यू विल बी सेपरेट फ्रॉम योर थॉट्स जस्ट वाचिंग देम, अते जो थॉट्स हन ओ ताही आ सकते हैं अगर उन्हां नू को वाच ना करे। थॉट्स कैन ओनली अकर इन योर एबसेंस, अदरवाइज दे कैन नॉट। इफ यू आर प्रेजेंट वाचिंग देन देर इज नो रूम फॉर द थॉट बिकॉज द प्लेस इज ऑलरेडी बींग ऑक्यूपाइड बाई यू। सो तीसरी प्रैक्टिस है सुरती दी, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु साडे अंदर भी है साडे बाहर भी है, पर वो नजर क्यों नहीं आता, नजर क्यों नहीं आता, साडी सुरती च नहीं आता। तो महाराज जी आखते हैं अपने जीवन दे विच एक नवी चीज पैदा करो, नवी चीज ग्रो करो, जेड़ी एक नवे किस्म की सुरती है, नवे किस्म की सुरती। उस दे लई सिंपल लफ्जों दे विच मैं आखा, फिर मैं बाणी दी लाइन भी आखांगा। महाराज जी आखते हैं अपनी सुरती दी सुरती रखनी शुरू कर दो। सोचो पहला इसनू दास की अर्ज कर रहा है, जिस तरह साडा बच्चा बाहर खेड रहा है ना, असी उसकी सुरत रखते हैं कि कित्थे है, किधर नू जा रहा है, किधर नू खेड रहा है। एक है साडी सुरती, कहिंदे हन सुरती दी सुरती रखो। बड़ा सटल अभ्यास है, हर वेले सुरती नू देखो कि सुरती कित्थे है। तो तुसी असी की अचीव करांगे, एक नवी सुरती जो सुरती नू देखदी है। पहला साड़ी सुरती नू को देखण वाला नहीं, कदे किते है, कदे किते है, कदे किते है, कदे किते है ना। एक होर सुरती डिवेलप हो गई है जड़ी सुरती नू देखदी है, उस दे लई ए टेक्निक गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दी है। कहिंदी सुर कहिंदे हन सुरती सुरत रलाई है एक, गुरु नानक साहब जी दे वचन हन। कहिंदे अपनी सुरत दे उत्ते सुरत नू रला दियो, सुरत नू रख दियो, सुरती सुरत रलाई है एक।

0: अपनी सुरत दे उत्ते सुरत रखो, ये अभ्यास हर वेले करो, यानी अपने ध्यान दा ध्यान रखो कि ध्यान कित्थे है, क्योंकि जितनी देर तक ध्यान अते सुरती बहुत बारीक बहुत मान्यूटली अपनी सुरती नू अपने ध्यान नू नहीं देख सकते, उतनी देर तक वो आत्मा जिही सूक्ष्म चीज नू नहीं देख सकते। होनी चाहिए उस दे वास्ते ए अभ्यास है। महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच सानू जो फरमाया है आप जी की सेवा च मैं दसदा हां कि इसे ही शब्द दे विच गुरु साहब ने ए तिन्ने चीजां आखियां। नंबर एक, भांडा धोए बैस धूप देवो, अपने इस भांडे नू शुद्ध करो, तौ दूधे को जावो, जे भांडा मैला है शुद्ध नहीं है उस दूध पाया की खराब नहीं हो जाएगा। फिर कहिंदे हन दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो। दूध कर्म कहिंदे जिहड़े तुहाडे कर्म हन ना, कर्म की हन, बोलना यह भी तो कर्म ही है ना, सारी इंट्रैक्शन जितनी भी है साड़ी ह्यूमन लाइफ दे विच वह साडे कर्म हन। कहिंदे ओ दुध वर्गे सच्चे सुच्चे पवित्र होने चाहिए हन, दुध वर्गे साफ, दुध वर्गे निर्मल कर्म हो, झूठ ना बोलिया जाए, कौड़ा ना बोलिया जाए, फिक्का ना बोलिया जाए, होमे च ना बोलिया जाए, किसी का दिल ना दुखाया जाए, दुख ना दे किसे जी पत स्यों घर जावो। कहिंदे किसे नू भी कदे तो दुख ना पहुंचे तां तुसी पत दे नाल वाहिगुरु दे घर च जा सकदे हो। तो अगर कोई शख्स हर्ट हुंदा है ते ओ निर्मल कर्म नहीं है, दुध वर्गे कर्म नहीं है। कहिंदे तुहाडे कर्म दुध वर्गे होने चाहिए, सो दुध की है, दुध वर्गे कर्म, भांडा की है, ए शरीर, ए साफ सुथरा होवे फिर दुध कर्म जो हन दुध वर्गे ओ इस दे विच दुध पाया होवे, फिर मक्खन कढ़न दे वास्ते असीं उस दुध नू जाग लगाने हैं, उस दुध नू जाग लगाने ना दही पाके। कहिंदे उस दुध नू जाग किवें लगाना है, ताकि वह दही बने, शुभ कर्म हो गया दुध, शरीर हो गया भांडा, हुण जाग लगाना है। कहिंदे सुरती दा जाग लगाओ, सुरती दा जाग लगाओ जिहड़ी इस दुध नू तब्दील करके उस फॉर्म च कर देगी जिथों मक्खन ने निकलना है। रब है मक्खन, और रब मक्खन दे वास्ते महाराज ने यह सिनेरियो साडे सामने रख्या है, यह सिमली दित्ती है। कहिंदे सुरत समायण, समायण दा मतलब हुंदा है जाग लगाना, भांडा तुहे बैस धूप देवो तौ दूधे को जावो, दूध कर्म फुन सुरत समायण। कहिंदे दुध तुहाडे पास आ गया, शुभ कर्म वो है दुध, फुन सुरत समायण, सुरती दी आदत, सुरती दा अभ्यास एक ऐसा जाग है जिहड़ा तुसी लगा दिओ हर वेले। अपनी सुरती भी सुरत रखो कि सुरती की कर रही है, सुरती की देख रही है, सुरती की सोच रही है, सुरती भी सुरत रखो, ध्यान दा ध्यान रखो, ऐ दो गल्लां याद रखो, सुरती भी सुरत रखो। ऐ किवें होएगा, हुण लंगर छकदे हो ते लंगर असीं हत्थां नाल छक रहे हां, दंदां नाल चबा रहे हां, पर सुरती नाल की कर रहे हैं, सुरती कित्थे है, नाल दी नाल भी कम कर लो, लंगर मैं छक रहा हां, सुरती कित्थे है, ते जे सुरती उत्थे लंगर नहीं छक रही तो सुरती नू वापस ले आओ, कि सुरती भी उत्थे ही प्रेजेंट होवे जिथे तुसी बैठे हो, जिथे लंगर छक रहे हो, ताकि तुहाडी सुरती उस टोटल जो एक्सपीरियंस नू एक्सपीरियंस करे कि तुसी बुरकी तोड़ रहे हो, उसनू मुंह च पा रहे हो, उसनू चबा रहे हो। सुरती शुड बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, बट वेन वी डू थिंग्स वी आर एबसेंट। असी खाना खा रहे होंने हाँ, सुरती करके असी कितने होर होंने, प्रेजेंट नहीं होंगे। सुरती का अभ्यास इस तरह करना है, हर चीज दे विच सुरत नू उत्थे प्रेजेंट रखना है, सुरती दे उत्ते सुरत रखनी है। इशनान कर रहे हो तो सुरती नू देखना है कि सुरत कित्थे है, इशनान ही कर रही है जां कुछ होर कर रही है। सैर कर रहे हो उदों सुरती नू देखना है कि सुरती सैर ही कर रही है जां कितने होर है। सैर असी सिंगापुर च कर रहे होइए तो सुरती करके इंडिया च तुरे फिरते होइए। सुरती भी उतर ही होवे। यह है सुरती का अभ्यास। यानी कुछ भी करना है उस दे विच यह ध्यान रखना कि सुरती उत्थे ही है या कि होर पे नहीं। सुरत समायण कहते सुरती का जाग लगा दो, दूध करन फिर सुरत समायण होए निराश जमावो। कहते इतना कुछ करन तो बाद कहते जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। कहते एना सारिया चीजा की तैयारी साधना करन तो बाद नाम जपया जाएगा। तो फिर नाम जपना है असी किवें? ए मन इंटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पावे। ए मन इंटी हाथ करो, इंटियां जदों पंजाब दे विच बीबियां मधानी दे नाल दुध रिटदियां सन ते और रस्सी नू आखदे हन नेत्रा, उस रस्सी दे दोने एंड्स दे उत्ते छोटियां छोटियां लकड़ी दियां गुल्लियां बनियां हुंदियां सन, उन्हां नू इंटी आखदे हन। कहिंदे मन नू जदों रसना दे नाल नाम जपना है इस तरह पकड़ के रखना है जिस तरह दोने हत्थां दे नाल बीबियां ने ओ लकड़ी दियां इंटियां पकड़ियां हुंदियां सन ते रस्सी हुंदी है नेत्रा। ए मन इंटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे, नेत्रा ए है रस्सी ए है कि किते तुहानू नींद ना आ जाए। भाव मन नू इतना घुट के रखना है कि मन तुहाडे ख्याल चो बाहर ना जाए, तुसी एबसेंट माइंडेड ना हो जाओ। इसका मतलब है कि नींद ना आ जाए। फिर रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पावो। फिर कहते हैं रसना दे नाल वाहिगुरु शब्द का नाम जो गुरु तो प्राप्त होया है उसनू जपना शुरू करो। जदों भी वाहिगुरु शब्द आखना है उदों फुल अवेयरनेस दे नाल आखना है। तुहानू पता होवे कि तुसी वाहिगुरु शब्द कह रहे हो और क्या है, ऐसा ना होवे कि एक दफा भी वाहिगुरु शब्द क्या होवे और तुहाडी अवेयरनेस दे विच ना होवे, तुहाडी सुरती विच ना होवे। हर वक्त जदों भी वाहिगुरु शब्द आखना है वो ध्यान दे नाल आखना है और उसनू सुनना है ताकि तुहानू पता लगे कि तुसी वाहिगुरु शब्द आख्या है। पहली स्टेज है वाहिगुरु दे नाम जपण दी, सिमरन करन दी, वो है बोल के। उसनू मेरी सजेशन यह है कि 6 महीने तो लैके 9 महीने या साल तक पहला साल जो है वो बोल के अभ्यास करना चाहिए है, बोल के, ताकि हर बार तुसी बोलो उसका पेस बहुत तेज नहीं रखना। माला ले लो वड्डी या छोटी, लेकिन उसका जो पेस है वह बहुता ज्यादा तेज ना हो, बहुत तेज तेज तेज तेज कहते ऐसा ना हो कि माइंड जो है वह उस कित होर पासे चले जाए। हर दफा वाहिगुरु शब्द कहण दे वेले पूरी अलर्टनैस दे नाल, पूरी अवेयरनैस दे नाल वाहिगुरु प्रेम दे नाल आखना है। और जिस चीज नू वाहिगुरु क्या है वह है साडे अंदर साडी आत्मा जोत, जिंदगी, जीवन दी रौ जो सबना दे विच है, उस वस्तु दा नाम है वाहिगुरु। और उसनू अपने ख्याल च लैके आना है। आफ्टर ऑल असी किसे वस्तु नू, किसे सबस्टेंस नू, किसे किसे ही होंद नू ही वाहिगुरु कह रहे हैं ना, उस होंद नू भी अपने मन च लियाना है। और बिल्कुल अवेयरनेस दे नाल, ख्याल दे नाल, ध्यान दे नाल, बेसुरती दे नाल वाहिगुरु नहीं आखना। तो इस तरह कीता होया जाप जो है अगर हर रोजाना असी अपना एक टाइम सेट कर लिए कि 1 घंटा करना है, अगर असी साल भर कर जावांगे तो साल भर दे विच इस तरह कीता होया अभ्यास सानू आत्मक मंजिलां च सुरती दे मंजिलां दे विच किते दा किते लै जाए। तो कि असी 1 साल भी इस विद्या दे वास्ते, इस प्राप्ति दे वास्ते डेडिकेट नहीं कर सकते? कि यह साडा फर्ज नहीं बनता कि बाबा जी की सारी बाणी च यही गल आखी गई, नानक के कर केवल नाम, सिर्फ नाम ही नाम है। फिर असी कदों जपांगे? नाम तो बिना महाराज कहते नरक कहीं ना लेके। सो ये जो विचार आप जी के सामने रखे हैं इन्हों आप द्वारा रिकॉर्डिंग्स के विचों सुन के भी रिवाइज कर सकते हो। तीन लैवल हैं जो मैं आप जी की सेवा च रख चुका हाँ। काया नू साधना है और मन के उत्ते निगाह रखनी है, थॉट्स के उत्ते निगाह रखनी है, थॉट्स के उत्ते सवार रहना है। तीसरी गल सुरती का जाग लगाना है। दुद्ध वर्गे कर्म करने हैं, निर्मल पवित्र इतने अच्छे कर्म करने हैं कि उन्होंने कंपेयर किया जा सके दुद्ध वर्ग, और फिर उस दुद्ध नू सुरती का जाग लगाना है। सुरती का जाग लगाना है, सुरती का अभ्यास करना है। इशनान करने वेले सुरती कित्थे है, बिस्तरे उत्ते लेटे पए हो सुरती कित्थे है, खाना खा रहे हो सुरती कित्थे है, कार चला रहे हो सुरती कित्थे है, सैर कर रहे हो सुरती कित्थे है। जिसने सुरती का अभ्यास करना शुरू करता उसने इसनू कंटीन्यूसली हर वक्त करना है। उस दे विच कोई फिर जो है वो टाइम अजिहा नहीं कि हुण ना कीता जाए। दिस इज ऑन गोइंग थिंग। सुरती का अभ्यास हर वेले करना। सुरती का अभ्यास करद्या करद्या करद्या करद्या सुरती ने इतनी शार्प हो जाना है, इतनी कंट्रोल्ड हो जाना है, इतनी माइन्यूटली देख सकन दे उसने काबिल हो जाना है कि वही सुरती दे विच एक दिन आत्मा ने आना शुरू हो जाना है। उस ही सुरती दे विच वो वाहिगुरु जी की जो जोत है उसने आना शुरू हो जाना है। उन ज्यादा समा नहीं है, इस करके कीर्तन की जो विचारां दी लड़ी आज इत्थे संपूर्ण हुंदी है। जो टॉपिक आरंभ होया सी उसनू अज इत्थे महाराज जी की बख्शिश दे नाल असी कंप्लीट कर रहे हैं। और इन्हां विचारां नू आप अपने अभ्यास दे विच लियाओ, सुरती की साधना करो और रोजाना अपने अपने जीवन दे विच कोई टाइम जरूर कमिट कर लो। सवेरे सूट करता है जा रात नू सूटेबल है जा दोपहरे, पर एक टाइम ऐसा होवे जो तुहाडा सिर्फ अपने वास्ते होवे। उस वक्त दे विच रोजाना वाहिगुरु शब्द का अभ्यास जो है वो नितनेम दे नाल करना है और बहुत ध्यान दे नाल जागरूकता दे नाल करना है। और उस दे नाल नाल अगर हो सके तो गुरु बाबा जी की बाणी का अभ्यास जितना बढ़ सके गुरु ग्रंथ साहब महाराज का एक पेज रोजाना पढ़िया जाए। जे गुरु ग्रंथ साहब नहीं हैं तो गुटकियां आप तो पढ़ लिया जाए। तो इस तरह अपने मन नू हर वक्त किसी दायरे दे विच रखना है। तो इस दायरे दे विच रख के जो अभ्यास करता जाएगा उसका अंदर भी शुद्ध हुंदा जाएगा, शरीर भी उसका मंदिर बन जाएगा, शरीर उसका रब की कामणी बन जाएगा, शरीर उसका सरोवर बन जाएगा और उस सरोवर दे विच आत्मक फुल खिलणगे और उसकी जो जीवन की यात्रा सफल हो जाएगी। फूल चुक दी खेवा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की
1: फतेह। यू आर लिसनिंग टू सीकनेट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग।
0: वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह।

0: से पौजल तर गया जिने तो है ध्यायो
1: ने पूर्ण प्रताप पायो
0: जो सेवे सत मुरार
1: से पा

राजा कूड़ पर जा कूड़ सर संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ पार।

कौड़ी दान महंगा लिखा तो मिले तमस्त कलाई है कूड़ा लाल छेड़ी है एक मनाल त्याई है फल तेवे हो पाई है जेवे ही कार कमाई है जे हो।

खत्री शब्द शुभ शब्द शुद्ध शब्द प्राकृत सर्व शब्द एक शब्द जेको जाने पियो नाता कला से सोई नंदन दियो महला दूजा एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवा आत्मा आत्मा बस।

पंक्ति दे अंदर जरा सोचो कि सतगुरु ने की भेद रखिया। एक बेबल होई होई जीव रूप स्त्री सतगुरु दे चरणा चरदास कर दी है, ते सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने इसका नक्शा बड़ा सुंदर खिंचया है। पंक्तियां दोनों का डिस्टेंस है भावे, पर फासला जरूर है, पर अंत जड़ा है ना शब्द का प्यार, शब्द की मिलावट, शब्द का संग्रह गरीब नवाज सचे पातशाह ने इथे आके किया। जीव प्राण सुख दात्या निमख निमख बलहार जियो, क्योंकि दयो गसाई मीतला तू संग हमारे बात। एदा मतलब ए होया भाई सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह ने जेड़े शब्द की पंक्ति लिखी है ना, इसका भाव बड़ा गहरा है। भाई हो अकाल पुरख महाराज, हे निरंकार, हे प्यारे पति गुरुदेव, हे मालिक, हे स्वामी, हे मेरे प्यारे महबूब, दुनिया दे रचनहार दाता, तू साडे संग रहिंदा सैं, साडे नाल जीउंदा सैं, साडे नाल नाल चलदा सैं, साडे घर दे अंदर तेरा निवास सी, तेरा साडे घर दे अंदर वासा सी, साडे सिर उपर तेरा हथ सी। गरीब नवाज सचे पातशाह पता नहीं की कारण होया तू साथों विछड़ गया, तू साडे घर विचों चला गया, सतगुरा तू साडे घर विच नहीं रहा, तेरा हथ साडे सिर उपर नहीं रहा, मेहरबान गुसाई तेरी कृपा साडे घर अंदर नहीं रही। बड़ा समा हो गया दर्शन कीते हैं, तू तो साडे नाल रहिंदा सैं, कोई गल ते दस, नाराज क्यों होया? नाराजगी है कुल दस, केड़ी नाराजगी है, की भूल होई है, की गलती होई है? जीव रूप स्त्री भी अपने पति दे चरणा च अरदास करदी ना, महाराज स्वामी मालिक प्यारे पति गुरुदेव जीओ, की भूल होई है? नाराज हो गए, मुंह फेर के बैठे होयो, की गल होई? करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी, हां वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। किड्डी बेबलता दी अवस्था है, किड्डी विछोड़े दी अवस्था है, किड्डी बैराग दी अवस्था है। कहंदे कलवत ते सिर दे उपर धरिया जावे, शरीर आरे नाल दो फाड़ हो जावे, मैनू मंजूर है, पर हे प्यारे पति, हे प्यारे गुरुदेव, हे प्यारे मालिक, तेरी पिठ तेरा मुंह परले पासे सानू परवान नहीं। करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, हां वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे। तू मैनू मारना ते ओदा ही गला घुट के मार दे ना, मैनू करवट दे के, मैनू पिठ दे के क्यों मार रहे हैं? क्यों परां नू मुंह करके मैनू मार रहे हैं? क्यों नाराज होके मार रहे हैं? सतगुरा नाराज ना हो, तू संग हमारे बास जियो, तू साडे संग रह, साडे घर अंदर रह, तेरी सेवा करिए, तेरे

से शरण गुरु जी भरत नारदन पदार्थ वर्षा पर्याणी गुरबाणी लागे तीन हस्ते है।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है? इसकी बहुत सी कारें हैं, इसकी बहुत फैक्ट्री है, इसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

फिर की खुली ताकि फिर खुली सतगुरु कहने लगे आ गए मैंने यकीन सी कि तू आवेगा। अज कुछ भाव घटाया है कि नहीं, कीमत घट की है कि नहीं? आखन लगा मालिक धन गुरु गोबिंद सिंह सत्य पातशाह कीमत तो कल वाली रखी है लेकिन एक रैत रख दिती है केड़ी। महबूबा दे कूचे अंदर मैं दिल में चढ़ जन था। नंदलाल कहने लगे अपनी विथे आप

सुन ली तेरी गल, ये तो गुरु दर का कुत्ता बन गया, कुकर बन गया। कबीर जी ने शायद इसे लिए आख्या, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जे खिंचे तह जाओ। जिस वेले उसने अपने आप नु सग कहा, कुत्ता के आखन लगा, तो होर भी गल है, मेरे ते गुरु गोविंद सिंह जी का निशान पै गया है, मैं दागया गया हाँ। नंद लाल ते सुन ले तेरी गल, आखन लगा नाना कई कुत्ते मालक नु इन्ने प्यारे होंगे ने कि छेज ते चढ़ जाते। ओ बाबा मैनू हाले ये अवसर प्राप्त नहीं होया, ये मौका नहीं मिले अपने गुरु गोविंद सिंह जी की छेज ते बैठ मा। नंद लाल आगरा ते बेहद पदार्थ सन तेरे खान पीन वास्ते, इत्थे की मिलता है, इत्थे की मिलता है। ते नंद लाल ने

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ही ये करना है कि कार्य स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया, इसका फल की मिले। तो अगली पंक्ति जो फरमाते हैं, कार्य स्नान सिमर प्रभु अपना

फिर लक्षण आशा जी दीवार लगा के कीर्तन भी समाप्ति उस तो उपरंत अरदास गुरु के हुक्म नामे ए मर्यादा तो दास ने बेनती की सी भी आज दी चाह सेवक वालों तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ए भी गुरु दी प्रेरणा सी तो उस संसार

पूरा हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद आज आशा राग विचित है, आशा राग तो आओ अखीरला ये छंद है आज आशा जी दीवार दे कीर्तन दा भोग पै रहा है सर्वसा पूर्णी आशा जी दीवार तो ये छंद आप आशा राग च लगाओ।

जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेविया तिन सुख सद होई, जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया।

जिनका कीता माटी ते रतन, गर्भ में राख्या जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा वड्याई, तिस प्रभ को आठ पहर ध्याई। रमैया रेन साध जन पावो, गुरमिल अपना खसम ध्यावो। जिन कीता मूढ़ ते बगता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता, जिस प्रसाद नवै निध पाई, सो प्रभ मन ते बिसरत नाई। जिन दिया निथावे को थान,